2026. तो चलो जी शुरू करते हैं जी हमारा शो विद आवर फर्स्ट अनाउंसमेंट. ये है जी, एक मिनट जरा खोल लूँ ये डॉक्यूमेंट. ब्रेस्ट अवेयरनेस एंड ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन. हांगकांग में महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर. हर महिला को अपने ब्रेस्ट के नॉर्मल लुक और फील के बारे में पता होना चाहिए. हमेशा ब्रेस्ट अवेयर रहो. कोई भी अनयूजुअल चेंज दिखे तो तुरंत ध्यान दो, जैसे ब्रेस्ट में लंप, साइज या शेप में फर्क, निप्पल का अंदर खींच जाना, स्किन का टेक्सचर बदल जाना. अगर ऐसा कुछ लगे तो जल्दी डॉक्टर से मिलो. जल्दी पकड़ने से जिंदगी बच सकती है. प्रिवेंशन के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ. रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी वेट और वेस्ट रखो. अल्कोहल छोड़ दो. ज़्यादा जानकारी के लिए www.cancer.gov.hk/breastcancer पर जा सकते हो. अपना ख्याल रखो. ओके, तो पहला गाना जो रिक्वेस्ट किया है मनी ने, द नेम ऑफ द सॉन्ग इज सी वॉक बाय करण औजला. एंजॉय द सॉन्ग.

And welcome back to our second announcement. This is Employment Services of the Labor Department. क्या आप जॉब ढूंढ रहे हो या सोच रहे हो कि कहां से मदद मिलेगी? लेबर डिपार्टमेंट के 10 जॉब सेंटर्स में बिल्कुल फ्री मदद मिलती है. लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन लो. एम्प्लॉयमेंट एडवाइजर से मिलो, अपनी नीड्स डिस्कस करो और स्पेशल प्रोग्राम्स ज्वाइन करो जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाएं. एथनिक माइनॉरिटी जॉब सीकर्स के लिए रेशियल डाइवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है. रजिस्टर्ड सोशल वर्कर्स पूरी मदद देंगे. इंग्लिश या चाइनीज नहीं आती, फ्री इंटरप्रिटेशन सर्विस भी अवेलेबल है. ज्यादा जानकारी के लिए www.jobs.gov.hk/em या इंटरक्टिव एम्प्लॉयमेंट सर्विस मोबाइल ऐप डाउनलोड करें. ओके, आते हैं जी अगले रिक्वेस्टेड गाने पर. अमन पन्नू ने यह गाना रिक्वेस्ट किया है. गाने का नाम है जी लामा बाय जैस्मिन सैंडलर्स. इंजॉय द सॉन्ग.

ऑलराइट गाइस, बढ़ते हैं जी अगले अनाउंसमेंट पर। दिस इज फॉल्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। काम शुरू करने से पहले अपना स्टेटस क्लियरली समझ लो, आप एम्प्लॉई हो या सेल्फ एम्प्लॉयड। कई चीजें मैटर करती हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट राइट्स और बेनिफिट्स। स्टेटस सिर्फ एम्प्लॉयर नहीं, दोनों पार्टीज डिसाइड करते हैं। अगर एम्प्लॉयर आपको फोर्स करके सेल्फ एम्प्लॉयड बना रहा है तो आप मना कर सकते हैं। अगर आपको स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे तो लेबर डिपार्टमेंट के कंप्लेंट हॉटलाइन पर कॉल कीजिए 2815-2200। ओके, अगला गाना रिक्वेस्ट किया है यासीन खान ने, और ये गाना है जी 5-7-11 बाय करण रंधावा। एंजॉय द सॉन्ग।

एंड वेलकम बैक। आते हैं हमारे चौथे अनाउंसमेंट पर। दिस इज प्रिवेंशन ऑफ सीजनल इन्फ्लुएंजा कोविड 19 एंड अदर रेस्पिरेटरी इलनेसेस। इस सीजन में अलर्ट रहो, फ्लू, कोविड 19 और सांस की बीमारियां अभी भी चल रही हैं। अच्छी पर्सनल और घर की सफाई रखो। खांसी या छींक आए तो टिश्यू से मुंह और नाक ढक लो। हाथ को लिक्विड सोप और पानी से कम 20 सेकेंड्स तक धो लो। बीमार फील हो तो मास्क पहनो और तुरंत डॉक्टर से मिलो। गवर्नमेंट का 2025 और 26 फ्लू वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। हर साल वैक्सीन लगवाओ, जितनी जल्दी उतना बेहतर। एलिजिबल लोगों को फ्री या सब्सिडाइज्ड फ्लू शॉट मिल सकता है। कोविड 19 अभी कम है, लेकिन हाई रिस्क लोगों को बूस्टर वैक्सीन टाइम पर लगवाना चाहिए, जैसे केयर होम्स वाले, 65 साल और उससे ज़्यादा के बुजुर्ग, 50 से 64 साल के क्रॉनिक पेशेंट्स, इम्यूनिटी कमज़ोर लोग और प्रेग्नेंट महिलाएं। ज्यादा जानकारी के लिए www.chp.gov.hk पर जा सकते हो। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। ऑलराइडी, अगला गाना पिंकी ने रिक्वेस्ट किया है। गाने का नाम है तड़प बाय गैरी संधू। एंजॉय द सॉन्ग।

And coming over to our last announcement, this is the Working Family Allowance Scheme. Working Family Allowance Scheme ab application ke liye khula hai. Ye household ke basis par apply hota hai. Pura ghar Hong Kong resident hona chahiye. Working hours, income aur assets limit ke andar hone par allowance mil sakta hai. Ek mahine mein multiple jobs ke hours count kiye ja sakte hai. Allowance levels, non-single parent households ke liye. 144 hours ya zyada to milega aapko basic allowance jo hai 1150 Hong Kong dollar. Ye hai full rate. 168 hours se aur zyada apply kar sakte hai medium allowance ke liye jiska full rate hai 1380 dollars. 192 hours se usse bhi zyada वो अप्लाई कर सकते हैं हायर अलाउंस के लिए जिसका फुल रेट है 1610 हांग कांग डॉलर्स हर एलिजिबल बच्चे के लिए एक्स्ट्रा चाइल्ड अलाउंस मिल सकता है वो है 1610 हांग कांग डॉलर्स फुल रेट है ये पर मंथ मिलेगा नोट कीजिए कि WFA ले रहे घर CSSA नहीं ले सकते पूरी डिटेल्स इनकम एसेट लिमिट्स और एलिजिबिलिटी के लिए आप www.wfa.gov.hk पर जा सकते हैं इंक्वायरीज के लिए आप 24 आवर हॉटलाइन भी पे भी जा सकते हैं नंबर है 2558-3000 ओके एंड नेक्स्ट सॉन्ग एंड द सॉन्ग्स फॉलोइंग ओके तो अभी जो गाना लगेगा दिस विल बी C4 बाय हरकीरत सांगा रिक्वेस्टेड बाय योगी जट Then we've got Fight by Jordan Sandhu, requested by Amrit Sandhu. Then we've got Raat Bhar by Ustad Jafar, requested by Haider Ali. Then we've got Mastana by Rasha, requested by Yasir Khan. Then we've got Two Lions by Nomi Jatt and Ify Jatt, requested by Afai HK. Then we've got Defaulter by R. Knight, requested by Bruno. Then we've got Carambord by Sherryman, requested by Sonia Kaur. Then we've got

0: जाए ते एक गल याद रखनी चाहिए कि बेलने विच पए होए गन्ने ते कोल्लू विच पए होए तिल कदे सुके वापस नहीं आते।
1: ब्रो
0: आया तो ब्रो सफर सारा।

0: on the radio, web, and mobile app.
1: मुझे ये बहुत ही पसंद है.
0: Metro Plus, your connect.